सतगुरु विटोवार चित मिलिया कसम संभालिया जिनकार उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दो जिन के डूबे से बन जा रहा सतगुरु है बोझा कर ले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतार।

0: सलाम जवाब दोवें करे मुंडों को था जाए, नानक दोवें कूड़ियां थाए ना काई पाए, पौड़ी जित सेवे सुख पाइए,
1: पौड़ी जित सेवे सुख पाइए, सो साहिब सदा संभालिए, जित कीता पाइए अपना सकाल पुरी क्यों घालिए, मंदा मुन की चाहिए दिल में नजर निहालिए, जो साहिब नाल हारी ते बेहा पासा ढालिए, किसलाहे उपर घालिए, किसलाहे उपर घालिए,
0: जिन गुरमुख नाम

चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां काल साजी साहेब तहां तहां रचे आरे आयत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री

belong to Sikhanu Sikhi Dhanam Kesadan Rahat Dhanam Bobek Dhan Visah Dhan Prasadhanam Dhanna Sirdhan Naam Dhanam Sir Amrit Sar Sahib Jidem Darshan Ishnanam चौंकियां चंडे बंगे जुगाओ जुग अटल परम का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रख आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरुद्वारे गुर धम्मां दे जना तो पंथ नो भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दादान खालसा जी नु बख्शा हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान मोटे आदी ओट तन तन श्री गुरु रामदास साहब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहब जी विखे तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जियो महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आसा दीवार दे भोग जी की अरदास भुल चुक माफ करनी सेखा पढ़ते सुनते सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितो ज कहि जाय कोट इंद्र इंद्रान साह साहन गणिजय त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत तह सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत अब रख दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख सफारी कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी छीनत वस्त्र दीन बहु साज सो दामा अपदा ते राखिया गन का पढ़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सुप्रसन्न कल युग होए रख हो दास पाठ की लाज तन जियो तेह को जग में मुख ते

नेत्र है। जस नाव चढ़ भव सागर तार, धीरज धाम बनाए यह तन, बुद्ध सदीपक ज्यों उजियार। ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ लै, कतुरता कुतवार बुहार। ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ लै,

तिस सहज सुपाई दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चट्टी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावी साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह जिस पर

सतगुरु मिला सुपाए, सहज गुण गाइया जियो, गुण गाए विगसै सदा अनुदिन, जो आप सच्चे पावै। अहंकार हो मैं तज माया, सहज नाम समावै। आप कर्ता करी

हौ तिस सेवी दिन रात, मैं कदे न विसरा जियो, कदे न विसारी अन दिन समारी।

निवलाए तो सहज समावहि जियो। सहज समावे तो हर मन पावे, सदा अतीत बैरागी। हलत पलत सोभा जग अंतर, राम नाम लिव लागी। हरख सोग दुहाते मुक्ता, जो प्रभु करे सो पावे। सत संगत मिले वड भाग, ता हर रस आवे जियो। दूजे भाई दुख होए, मन मुख जम जोया जियो। हाय हाय करे दिन रात, माया दुख मोहया जी।

बिन नावे को साथ न चाले, पुत्र कलत्र माया तोहिया, दूजा पाई दुख हो मन मुख जम जोहिया जियो, कर कृपा ले।

माता तरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया।

गए मशक्त काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया गए मशक्त।

बानी गुरु, गुरु है बानी, विश्व बानी अमृत सारे, गुरबानी कहे सेवक जन माने। पर तक गुरु निस्तारे, अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीत में अपने, तन मन हुए निहाल, जागुर देखा सामने, तन तन श्री गुरु रामदास जी महाराज, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियो महाराज।

पवन गुरु पाणि पिता माता धरत महत दिवस रात दई दाई दाया खेल सगले जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म दू कर्मी आपो अपने।

गए मशक्कत का नानक ते मुखी जले के ती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दा सुंदास हृदया गए बिनमतास।
1: पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात।

0: जपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता सलोक
1: पवन गुरु पाणे पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेल सगल जगत चंगे आईया बुरे।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत सास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावह मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया जिस नौ कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनु तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया
तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ पई ले निवासा। पाणी पावक तिनह किया, पंक जो मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी आले, मन एक न चेतस मूड़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया। मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरणा। जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। पही परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरै कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म बृथा जात रंग माया कै। रहाओ जप

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होय चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन को आज संगरियै। पूरन होय हमारी आसा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिय हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाय ब्रह्मा बाप तरा, काल पाय शिव जू अवतरा। काल पाय कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पाट पाट की जाने। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्टि सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोहे तेती। तुमरा लखा न जाई पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंग पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहोर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाय अचंपव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संग रहो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दार

आई दुष्ट दोख तेले हो बचाई। सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कह।

आस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शबद गावण आईया। शबदो तगावहु हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा। घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया एह वडियाईया। कह नानक सुन हो संत हो शबद धर हो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शबद तित कर सभागै। कर सभागै शबद वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ।

आप उत्तरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र

कौन को कलंक रहयो राम नाम लेत ही। पतित पवित पै राम कहत ही। राम संग नाम देव जन कौ प्रतज्ञा आई। एकादशी व्रत रहै काहे कौ तीर्थ जाई। पनत नाम देव सुकृत सुमत पहि। गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। हर के भजन कौन कौन न तारी। खाग तान मीन तान मृग तान ब्राह तान साधु संग उदारी। रहाओ देव कोल दैत कोल जाख किन्नर नर सागर उतरे पारी। जो जो भजन करे साधु संग तिन के दुख निवारी। काम क्रोध महा बिखिया रस इनते पये निरारी।

गोरमुख पंथ गहे जामपुर पंथ मेटे, गुरसिख संग पंच दूत संग त्यागे है, चरण शरण गुर करम परम खोई, दर्श अकाल काल कंटक पै भागे है, गुर उपदेश वेश बजर कपाट खुले, शबद सुरत मूर्छत मन जागे है, किंचत कटाश कृपा सर्ब निदान पाई, जीवन मुकत गुर ज्ञान लेव लागे है, किंचत कटाश कृपा सर्ब निदान पाई, जीवन मुकत गुर

राम सिमर, राम सिमर, राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई। राम सिमर, राम सिमर, राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई। रहा बनिता सुत देह गृह, संपत सुखदाई, इनमें

अजामल गज गणिका, पतित कर्म कीने, तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सुकर

तरत महत दिवस रात दुदाई दया खिले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म दूर करमी आपो अपने के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्त कार नानक ते मुख उजले केती छुट्टी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

हरिया तिन जीता। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत घर चौथा थल थल श्री गुरु रामदास साहेब जियो महाराज।

लिख लिख पढ़या तीता कड़या बहु तीर्थ भव्या ते तो लव्या बहु पेकिया देह दुख दिया सौ वैजिया अपना किया अन्ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर न पहरे एनस कहरे मोहन में कुत्ता क्यों जागे गुरबिन सुता पागो पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई श्री

जे मेले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़ी हो एक मन अलख ते आइए पालते वे हो पाइए जिवे ही कार कमाइए जे होवे पूर्व लिखे ता तोड़त ना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए।

0: बन्नासी हर खवन अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको हो हे कृपाल सो जन प्रभु तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो तन तन ते तन जन तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो
1: सत सत हर सत सत सते सत पहनियां दूसर आनन अवर पुरख पौरा तन सुनिया अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेह रसने चाखे हो तेह जन तृप्त अगाए जै ठाकुर सो प्रसन्न प्यो सत्संगत प्यार हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार जै ठाकुर सो प्रसन्न प्यो सत्संगत प्यार हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार
2: सच सभा दीवान सच सच्चे पै धरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजो संसार आप भुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम न पवे अमुलो जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख दिन हो पाए हर गुरु नानक जिन परस्यो ते बहुत फिर जोड़ ना आए हर गुरु नानक जिन परस्यो ते बहुत फिर जोड़ ना आए
3: कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिए सिद्ध सादिक ते तीस कोर तिर कीम न परिए ब्रह्मादिक सनकाद सेख गुण अंत न पाए अगहों गहयो नहीं जाए पूर श्रब

ब्रह्मादिक शिव शांत मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनोख देव दानव इक तिल ताको मर्म ना पावत प्रया प्रभ प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल कास जावत।

0: सतगुरु संतों का धर्म गर्थवा हो त्रेतर जतह का जोर गर्थवा हो द्वापर तपह का सत गर्थवा हो कल जुग रथ गण का गूढ़ गर्थवा हो महला पहला
1: स्वाम कहे से तंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सबको सत समावेर कहे रहे अप्रभु राम नाम देवा मैं सुर नाय लगे प्रश जाहे नान को मुखंत पाहे जुज में जोर चली चंद्रावल कान।